0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी, डिलीशियस फूड, खुली डुली पार्किंग, ब्यूटीफुल एम्बियंस, मीटिंग, ब्याह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन, भुलियो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन। फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191।
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
2: पील रीजनल कौंसिल दी 26 अक्टूबर नू हो रही इलेक्शन मौके ब्रैम्पटन दे वार्ड 9 अते 10 तों उम्मीदवार सतपाल सिंह जौल दा नाम याद रखना जरूरी है। स्कूल बोर्ड दे ट्रस्टी वजों सतपाल सिंह जौल दियां मिसाली सेवावां तों लोकां दे मना विच तसल्ली दी लहर है, जिस करके वार्ड 9 ते 10 दे वसनीक रीजनल कौंसलर वजों सतपाल सिंह जौल दी जित यकीनी बना रहे हन। लोकां दियां समस्यावां हल करन लई सतपाल सिंह जौल वालों लगातार तत्परता नाल काम किया जाता है। उना दी कैंपेन नाल संपर्क करन लई कॉल करो 416-895-3784 ते 416-895-3784।
3: 226 ब्रैम्पटन म्युनिसिपल इलेक्शन सोमवार 26 अक्टूबर नु है। जे तुसी वोटिंग डे वाले दिन वोट नहीं पा सकदे तां तुसी एडवांस वोटिंग डे दिनां दौरान पहला वोट पा सकदे हो। एडवांस वोटिंग 9 10 11 16 अते 17 अक्टूबर नु होवेगी। वीकडेज विच वोटिंग दा समा दोपहर 12 बजे तो लैके रात दे 8 बजे तक होवेगा अते वीकेंड्स नु सवेरे 10 बजे तो लैके शाम नु 5 बजे तक तुसी ब्रैम्पटन विच किसी भी एडवांस वोटिंग लोकेशन ते वोट पा सकदे हो। वोट पाउन लई जे तुहानू वोटर नोटिस मिली है तां ओ अपने नाल लैके आओ, नाल ही अपनी पहचान दा सबूत आईडी लैके आओ जिस उत्ते तुहाडा नाम अते एड्रेस लिखिया होवे। जे तुहानू वोटर नोटिस नहीं मिली तां वोट पाउन लई अपनी आईडी नाल लैके आओ। तुसी उत्थे ही अपनी वोटर इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकदे हो जां अपनी वोटर इन्फॉर्मेशन एड करवा सकदे हो। वोटिंग लोकेशन, वोटर इन्फॉर्मेशन अते कैंडिडेट्स दी लिस्ट लई brampton.ca/brampton-votes ते जाओ। ए मैसेज सिटी ब्रैम्पटन वालों है।
4: रिट्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा ध्यान ना सुनो। सस्ता

0: महल।
1: ओ यार ना आता दस दे।
0: स्वीट महल स्वीट महल स्वीट महल।
2: टॉप क्वालिटी आला साफ सुथरा वेज ते नॉन वेज खाना। 100 to 1000 बंदियां दी केटरिंग ली पूरा इंतजाम। स्वीट महल दे नवे ते तीजे केटरिंग ट्रक विच। स्वीट महल रेस्टोरेंट इन रेक्सडेल 416-699-9991।
0: स्वीट महल।
3: हाय मेरे तो पैर ही पुंजे नहीं लग रहे। मेरी निक्की भैन का विआह है, मैं तो अपने सारे चा पूरे करांगी।
4: क्यों नहीं चन करे, कहे तो सिर तो पैर तक सोने चमड़ा दें।
3: ठीक है जी, चलो फिर सब तो वध वैरायटी वाले अशोक ज्वेलर कोल। उना कोल गोल्ड ते डायमंड ज्वेलरी दे सारे लेटेस्ट वैरायटी दे गहने ने। सेट रानी हार, छापा, मुंदरियां, छल्ले, बिस्कुट, चेनिया, वंगा, कोके, टिक्के, कड़े, ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, सब कुछ प्योर ते यूनिक।
4: हां नाले मैं सारी दियां बाहां भी तां मिंगियां करनियां ने, 12 चूड़ियां ओनू भी ले दांगे।
3: तो मेरे जीजे ली घड़ी।
4: आहो अशोक ज्वेलर कोले रेडो दियां रोलेक्स दियां सारियां घड़ियां हुंदियां ने।
3: चलो फिर छेती चलो अशोक ज्वेलर 7198 रोड माल्टन इन अशोक प्लाजा। फोन नंबर है 9056714290।
5: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है। लेडीज मेंस पार्टी वेयर, ब्राइडल लहंगा, सूट्स, साड़ीज, कुर्तीज, अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना होवे ते आज ही आओ। सूट्स ते ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकते हो। नवरात्रि स्पेशल घाघरा चोली जस्ट $50। मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। मेंशन CJMR एंड गेट 20% ऑफ ऑन एवरी ड्रेस। अनोखा अंदाज 6101 Mayfield Road, Unit 3, Brampton. Call 905-794-4005.
6: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM Springdale Dental Center दे नाल।
7: Wide range of services, wisdom tooth, root canal, denture.
8: For dental extraction, cleaning, gum treatment and implant.
6: SM Springdale Dental Center, 2260 Bovade Drive East, Brampton. Bovade Jingusi Dental Center, 811 Bovade Drive, Unit 17, Brampton. Call 905-789-8266.
9: डायमंड एंड डायमंड्स पर्सनल इंजरी लॉयर्स। येकर तो हड़ा कार वैन ट्रक चलाउंदे समय एक्सीडेंट हो गया है या फिर तुसी किसी जगह ते तिलक के डिग पए हो, कसूर तो हड़ा है या नहीं, तुसी पहला वांगू हुण काम ते जा अपने व्यापारक अदारे ते नहीं जा सकदे। सारे खर्चे ज्यों दे त्यों बरकरार हन। उपरो इंश्योरेंस कंपनियां भी आनाकानी कर रही हन। तुसी सोच रहे हो करिए ता हुण की करिए, चीचियां ना वटो, बस एक नाम याद रखो, किसी भी तरह दे एक्सीडेंट ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਮਲਮ, ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਇਰਸ। ਫ੍ਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਮਨਦੀਪ ਚਾਵਲਾ 1800-567-HURT-4878 ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ 416-557-5010 416-557-5010। ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ ਲਾਇਰਸ।
10: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साहब को अपना साथी बनाओ।
11: लव

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320
1: CJMR 1320 ना तो

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: हेलो जी मित्रों बेनती है सारे अपनी अपनी थां ते खड़ जाओ भंगड़ा पाउण नूं तैयार हो जाओ प्रोग्राम शुरू होण लग्या है।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi.
2: मैं हरसिमरन सिंह साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रही ने पुलिस पैरामेडिक्स रीजनल रोड्स पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज वोट हरसिमरन सिंह
3: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह
4: इंतजार हुण खत्म होया रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौडी खुमान लैके आए हन साउथ कैल्डन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका पेश है कैल्डन कमर्शियल सेंटर हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन कैल्डन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो
5: कैलडन सब्जी फार्म जिथो तुसी खरीद सकदे हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां हरियां मिर्चा घिया मटर कद्दू लौकी शलगम टमाटर शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा सरों दा साग गंदलां वाला बनाया बनाया लैणा विद मक्की दी रोटी जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकदे हो इस तो अलावा स्टील सरवलो पित्तल तांबा मिट्टी हर साइज दे बर्तन फोल्डिंग बैड नवारी पलंग मूड़े साइकिल तंदूर आदि खरीदन वास्ते पहुंचो 12050 एयरपोर्ट रोड इन कैलडन एयरपोर्ट एंड मेफील और कॉल 9058409000 ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलडन सब्जी फार्म
6: पील रीजनल काउंसिल दी 26 अक्टूबर नु हो रही इलेक्शन मौके ब्रैम्पटन दे वार्ड 9 अते 10 तो उम्मीदवार सतपाल सिंह जौल दा नाम याद रखना जरूरी है स्कूल बोर्ड दे ट्रस्टी वजों सतपाल सिंह जौल दियां मिसाली सेवावां तो लोकां दे मना विच तसल्ली दी लहर है जिस करके वार्ड 9 ते 10 दे वसनीक रीजनल काउंसलर वजों सतपाल सिंह जौल दी जित यकीनी बना रहे हन लोकां दियां समस्यावां हल करन लई सतपाल सिंह जौल वल्लों लगातार तत्परता नाल काम कीता जांदा है उनां दी कैंपेन नाल संपर्क करन लई कॉल करो 416-895-3784 ते 416-895-3784
7: 2026 ब्रैम्पटन म्युनिसिपल इलेक्शन सोमवार 26 अक्टूबर नु है जे तुसी वोटिंग डे वाले दिन वोट नहीं पा सकदे तां तुसी एडवांस वोटिंग दे दिनां दौरान पहला वोट पा सकदे हो एडवांस वोटिंग 9 10 11 16 अते 17 अक्टूबर नु होवेगी वीकडेज विच वोटिंग दा समा दोपहर 12 बजे तो लैके रात दे 8 बजे तक होवेगा अते वीकेंड्स नु सवेरे 10 बजे तो लैके शाम नु 5 बजे तक तुसी ब्रैम्पटन विच किसी भी एडवांस वोटिंग लोकेशन ते वोट पा सकदे हो वोट पाउण लई जे तुहानू वोटर नोटिस मिली है तां ओ अपने नाल लैके आओ नाल ही अपनी पहचान दा सबूत आईडी लैके आओ जिस उत्ते तुहाडा नाम अते एड्रेस लिखिया होवे जे तुहानू वोटर नोटिस नहीं मिली तां वोट पाउण लई अपनी आईडी नाल लैके आओ तुसी उत्थे ही अपनी वोटर इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकदे हो जां अपनी वोटर इन्फॉर्मेशन एड करवा सकदे हो वोटिंग लोकेशन वोटर इन्फॉर्मेशन अते कैंडिडेट्स दी लिस्ट लई brampton.ca/brampton votes ते जाओ ए मैसेज सिटी ब्रैम्पटन वालों है
5: थियाड़ा सुपर मार्केट इथो तुसी इंडियन कैनेडियन पाकिस्तानी हर प्रकार दी ग्रोसरी हमेशा वाजिब रेट ते खरीद सकदे हो इथे मिलदियां ने एक्स्ट्रा क्लीन चुगियां हुईयां दालां दुध घ्यो बटर तारा सब्जियां फल फ्रूट दे नाल किचन च वरतों आउण वाले बर्तन भी तुसी खरीद सकदे हो पता है 3899 ट्रलोनी सर्कल 1 ब्लॉक साउथ ऑफ डेयरी इन मिसीसागा और कॉल अवतार सिंह बिल्ला थियाड़ा 9058248960 905-824-9960 थियाड़ा सुपर मार्केट
7: ब्रैम्पटन वासियों हो जो तैयार इस अक्टूबर पूरे महीने होने वाला है मस्ती मनोरंजन ते हैलोवीन दा धमाल सिटी ऑफ ब्रैम्पटन लेके आ रहे हैं थोड़े लिए फॉल फन एंड फ्राइट्स पूरे परिवार लिए मजेदार गेम्स क्राफ्ट म्यूजिक एंटरटेनमेंट ते होर बहुत कुछ ब्रैम्पटन दे वक वक रिक्रिएशन सेंटर विच ते मिस ना करो साडे खास फ्री कम्युनिटी इवेंट्स गोर मेडोज कम्युनिटी सेंटर ते कैसी कैंपबेल कम्युनिटी सेंटर विखे एंट्री बिल्कुल फ्री है बस नाल लेके आओ नॉन पेरिशेबल फूड डोनेशन ता फिर देर किस गल दी इस अक्टूबर अपने परिवार ते दोस्तों नाल मिलके मनाओ फॉल फन एंड फ्राइट्स इवेंट डेट्स ते होर जानकारी ली विजिट करो brampton.ca/fall मैसेज फ्रॉम द सिटी ऑफ ब्रैम्पटन
8: Real news, real impact. Showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: हुण अपने मनपसंद प्रोग्राम रंगला पंजाब नाल जुड़े रहो, जिथे भी होवो, जदों भी चाहो।
2: जी हाँ, हुण तुसी सुन सकदे हो CJMR 1300 VAM वख-वख प्लेटफॉर्म्स ते।
1: भावे तुसी घर होवो, दफ्तर विच या फिर लंबे सफर ते, अपनी मनपसंद आवाज नू अपने तो दूर ना होण दियो।
2: डाउनलोड करो CJMR 1300 V दी ऐप या सुनो iHeart Radio ते।
1: इत्थों तक की तुसी अपनी टेस्ला गड्डी विच भी सानू सुन सकदे हो।
2: फोन राही सुनन लई डायल करो 647-910-1300 9101320
1: अते अमरीका विच सुनन लई कॉल करो 641-741-1919 641-741-1919 ते।
2: एना ही नहीं, वख-वख IPTV प्लेटफॉर्म्स ते रंगला पंजाब टीवी राही सानू लाइव देखण दा आनंद वी माणो।
1: ता फिर देर किस गल दी, अपनी मिट्टी दी खुशबू, पंजाबी बोली दा प्यार अते पंजाबीयत दा एहसास माणन लई जुड़े रहो CJMR 1300 VAM नाल।
2: CJMR 1300 VAM तुहाडी अपनी आवाज, तुहाडा अपना पंजाब।
1: सुनते रहो प्रोग्राम रंगला पंजाब।
3: लो जी, एक बार फिर तो स्वागत है प्रोग्राम दे विच। टाइम अपने चाले चलता जा रहा है जी। 26 अक्टूबर जी लागे नजदीक आ रही है जी। तुसी जरूर अपना वोट, बैलेट वोट तैयार कर लो जी। ए थोड़े वास्ते एक बार बार असी मैसेज रिपीट करते आ रहे हैं, अफवाहों तो बचो। मैं बार बार तुहानू रिपीट कर रहा जी, अफवाहों तो बचो जिन्ना भी बच सकते हो। भावें थोड़ा दोस्त मित्र तुहानू कुछ दसे, तुसी अपनी मन दी सुनो। खा जे ब्रैम्पटन च होवो, मिसिसागा च होवो, कैलिनिन दे विच होवो, टोरोंटो दे विच होवो, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो जी। जिहड़े कहिंदे ने कि नवीं मशीन आईआं ने, ए आईआं ने, ओ आईआं ने, हाथ जोड़ के बेनती है, 20 साल तो मशीन लगियां हुई ने, उहदे नाल वोट काउंट होंदे ने जी। ते जे तुसी वाकया ही अपने आप नूं देखना चाहुंदे हो कि यार दुध दा दुध, पानी दा पानी, तो जाके वोट पा के आओ। कुछ एक कैंडीडेट्स नूं ए भी नहीं पता कि वोट पाउणी किस तरह जी, बट दात है जी उहनां दी PR टीम नूं कि उन्होंने दूजे कैंडीडेट्स नूं टारगेट करके अपनी बल्ले बल्ले फालतू दे विच करा रहे ने। प्लीज गो आउट एंड वोट। मैं बार बार रिपीट कर रहा जी, वोट करना थोड़ा एक एक लाजी फर्ज है जी। मैं हैरान हाँ, मैं आंकड़े देख रहा सी, जेड़े जेड़े मशहूर वोट्स ने, मसा मसा 1% भी नहीं पूरा होया होगा जी। जेड़े तुसी कॉलर्स आन के गल करदे, सानू चेंज चाहिए, सानू बदलाव चाहिए, सानू आ ओ ए ई ओ, जाओ थोड़ी वारी है, वोट पा के आओ। ब्रैम्पटन दे विच यूनिवर्सिटी आई है जी, जो वादा कीता सी, भावे जिदा भी आई है जी, आई है। उत्थे मेडिकल स्टूडेंट्स दाखला हो रहा है जी, उत्थे उन्हां दा डॉक्टर्स बन रहे ने, नर्सिस बन रहे ने, एक नवा फैसिलिटी, एक पौधा लाया ही हले, ओ वड्डा हो रहा जी। ट्रांजिट नू लैके, इंफ्रास्ट्रक्चर नू लैके बहुत कुछ एडवांस थोड़े लिए ब्रैम्पटन दे विच एक फ्लावर सिटी है। जिहड़े कहिंदे ने नहीं है जी, उन्हां दी आप दी सोच है, बट जे तुसीं देखो तां थां थां ते कंस्ट्रक्शन हो रही है, वधिया ऑपरचुनिटीज आ रहे ने। जिथे तुहानूं लगदा है यार कि टैक्स वध रहे ने जी, ओह मुद्दा उठाओ। जिथे तुहानूं लगदा कि लीगल बेसमेंट दा मुद्दा उठाओ, लीगल बेसमेंट दा साडा एक इलाकी फर्ज है कि असीं लीगल बेसमेंट बनवाईए ते असीं अपनी जान नूं खतरे ते ना पाईए। जे चंद डालर दे के जे आप लीगल बेसमेंट बना सकते हैं तो ये कोई हर्ज नहीं है, थोड़ी सेफ्टी लिए है जी। तो जेडे इलीगल बेसमेंट के टेनेंट रखे हुए ने बहुत साल तो चलते आ रहे, हूँ उस साहब का लोन सामने आया ही है जी। किन्ने लोगों ने, मीडिया ने, किन्ने एडा चल दिया, साढ़े को भी एडा आई सी, असी मना करता बिकॉज सानू पता कि दिस इज फ्रॉड। ये शरेआम तुसी कह रहे हो मीडिया दे विच के लख डालर लै लो, 2 लख लै लो, 50,000 लै लो, मुड़ के वापस करो ना करो थोड़ी इच्छा। ये शरेआम बकायदा तौर ते बोलिया भी गया। अज OPP अज ओ साहब दे बच्चे जिन्हें जेन्यून जेड़े पढ़ना चाहते ने, वह इस वेले कल्पे हुए पै ने। अगैन गाइज मैं बार बार कह रहा, गो आउट एंड वोट प्लीज, हाथ जोड़ के बेनती है। बाकी गाइज तुसी सारे सियाने हो, ते हुण थोड़ी साडी मुलाकात शाम नूं 6 बजे होवेगी जी। बाकी ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਸਟ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਏ ਜੀ। ਅਗੇਨ 416-303-1515 ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: लोकां दी भरपूर मंग ते पेश करन जा रहे हैं जी कैरी ऑन जट्टा 2

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: आओ राइट बोल पी के मुंडा जोश नहीं आउंदा ना ही पाया पाया लाके बने शेरू दादे ने कतल की ते बाट विच तिन जानी मुड तो ही जापदा दलेरू
1: वेस्टर्न पेंडू
0: आओ राइट बोल पी के मुंडा जोश नहीं आउंदा ना ही पाया पाया लाके बने शेरू दादे ने कतल की ते बाट विच तिन जानी मुड तो ही जा

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

मेनू मेरी ना परवाह यारा, मेनू तेरी खुशी प्यारी है, हुन रख लवी तू सांभ इनू, तेरे तो जिंदगी वारी है। तेनू उदास कदे नहीं देखना मैं, मेथों जो होया मैं कर जाना, तेरा ना सोचा जिस दिन मैं उस दिन तो पहला मर जाना, उस दिन तो पहला मर जाना।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: Quintessence Production.
1: गगन?
2: हाँ सोनिया,
1: किथे है तू?
2: यार मैं एक्सरसाइज करना आया।
1: मैंने बहुत बढ़िया सपना आया।
2: यार हुण फेर सपना?
1: किथे आ?
2: ओ मैं लेक ते आया।
1: मैं आ रही हूँ।
2: ओ तू इत्थे की करना?
1: उत्थे रुक।
2: हेलो सोनिया, ओए।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: ओए संदीप सिंह जी हमारे हॉकी इंडिया के सितारे और शहबाद दे प्यारे गांव में एंट्री ले चुके हैं आइए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए पधारिए

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca.
1: Sasta saman sasta nahi, high end da saman mile sasta.
2: वाह गिल साहब, ऑफिस टाइम ते काम दे विच एनी क्रिएटिविटी, उपरो एनी सारी एनर्जी, ना इस हेल्दी हेल्थ दा राज की है।
3: ओ यार काव्या, होमो केयर, होम्योपैथी फॉर बेटर हेल्थ।
4: जी कर तुसी अपनी बीमारी दे हल किसी होर पैथी नाल ना कर पाए होवो, ता एक बार होम्योपैथी दे माहर मीता ओजा नाल जरूर कंसल्ट करो। बीमारी पावे कोई भी होवे, कॉल करो
5: 6477602779 और विजिट 10 कॉटरेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन।
6: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
7: HK Movers,
6: local and long distance,
5: we also ship cars,
6: Kailer Transport and moving services.
7: For service with a smile, give us a call.
6: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
7: 416-524-6704.
6: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist,
6: HK Movers.
8: HK Movers.
9: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੈਨੂਆ। ਆਈ ਐਮ ਅ ਲੋਇਰ ਐਟ ਨੈਨੂਆ ਐਂਡ ਯੂਐਫਏ ਲੋਇਰਸ।
10: ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਅ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ, ਔਰ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਇੰਜਰੀ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ, ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ।
9: ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 647-793-6889।

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: You're listening to CNN Toronto, Chawla News Network Toronto.

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने दंदा दा रखो ख्याल SM स्प्रिंग डेल डेंटल सेंटर दे नाल।
3: वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, विजडम टूथ, रूट कनाल, डेंचर
4: फॉर डेंटल एक्सट्रैक्शन, क्लीनिंग, गम ट्रीटमेंट एंड इम्प्लांट।
2: SM स्प्रिंग डेल डेंटल सेंटर 2260 बोवेट ड्राइव ईस्ट, ब्रैम्पटन। बोवेट जिंगूसी डेंटल सेंटर 811 बोवेट ड्राइव, यूनिट 17, ब्रैम्पटन। कॉल 9057898266।
5: कैलेडन सब्जी फार्म जिथो तुसी खरीद सकते हो इना दे खुद दे खेतां विच उगाईयां जांदियां सब्जियां, हरियां मिर्चा, किया, मटर, कद्दू, लौकी, शलगम, टमाटर, शिमला मिर्चा अते वन सवनियां सब्जियां दा राजा। सरों दा साग, गंदला वाला बनाया बनाया लेना विद मक्की दी रोटी जां तुसी खुद अपने घर दे विच लिया के बना सकते हो। इस तो अलावा स्टील, सरवलो, पित्तल, तांबा, मिट्टी, हर साइज दे बर्तन, फोल्डिंग बैड, नवारी पलंग, मूड़े, साइकिल, तंदूर आदि खरीदने वास्ते पहुंचो 1050 एयरपोर्ट रोड इन कैलेडन, एयरपोर्ट एंड मेफील, और कॉल 9058409000। ग्रोसरी ते ढेर सारी सेविंग ली आओ कैलेडन सब्जी फार्म।
6: हुण अपने मनपसंद प्रोग्राम रंगला पंजाब नाल जुड़े रहो, जिथे भी होवो, जदों भी चाहो।
7: जी हाँ, हुण तुसी सुन सकदे हो CJMR 1320 AM वख-वख प्लेटफॉर्म्स ते।
6: भावें तुसी घर होवो, दफ्तर विच या फिर लंबे सफर ते, अपनी मनपसंद आवाज नूं अपने तो दूर ना होण दियो।
7: डाउनलोड करो CJMR 1320 दी ऐप या सुनो आई हार्ट रेडियो ते।
6: इत्थों तक कि तुसी अपनी टेस्ला गड्डी विच भी सानू सुन सकदे हो।
7: फोन राही सुनन लई डायल करो 647-910-1320, 647-910-1320।
6: अते अमरीका विच सुनन लई कॉल करो 641-741-1919, 641-741-1919 ते।
7: ते इन्ना ही नहीं, वख-वख IPTV प्लेटफॉर्म्स ते रंगला पंजाब TV राही सानू लाइव देखण दा आनंद भी माणो।
6: तां फिर देर किस गल दी, अपनी मिट्टी दी खुशबू, पंजाबी बोली दा प्यार अते पंजाबियत दा एहसास माणन लई जुड़े रहो CJMR 1320 AM नाल।
7: CJMR 1320 AM, तुहाडी अपनी आवाज, तुहाडा अपना पंजाब।
6: सुनदे रहो प्रोग्राम रंगला पंजाब।
5: की तुसी अपने घर विचले IPTV बॉक्स ते पूरे विश्व भर दे हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मद्रासी, तमिल, पाकिस्तानी चैनल, फिल्मां, सीरियल, ड्रामे, न्यूज, बच्चा दे चैनल अनबीटेबल कीमत दे देखना चाहते हो, भारी बचत ली आज ही कॉल करो 6475545859, 647-545-5 पील रेनोवेशन दा पैगाम। अगर तुसी अपने घर जा ऑफिस विचले वाशरूम सिर्फ एक हफ्ते विच तैयार करवाना चाहते हो, सिंपल तो लेके हाई एंड दे वाशरूम भाव लग्जरी वाशरूम तैयार करवाने लई चेती रखो, वाशरूम स्पेशलिस्ट टीम पील रेनोवेशन एक्सटीमेट बिलकुल फ्री। एक हफ्ते विच वाशरूम तैयार करवाने लई कॉल करो पिंदर सिंह 6476481847, 647-648-1847। वाशरूम स्पेशलिस्ट पील रेनोवेशन।

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: विश्वास प्रतीक नार रवि गुलाटी हुन नवे अंदाज विच रवि गुलाटी लॉ ऑफिस लीगल सेवा वादा काम हो गया जे सौखा मारो एक आवाज अजे ही कमा वास्ते रियल एस्टेट क्लोजिंग नोटराइजेशन एफिडेविट्स डेक्लेरेशन जा स्पॉन्सरशिप लेटर्स पावर ऑफ अटर्नीज बच्चा लाई कंसेंट लेटर्स बैरिस्टर सोलिसिटर नोटरी पब्लिक रविंदर पाल सिंह गुलाटी 905-232-8700 अपॉइंटमेंट वास्ते लॉग इन करो notaryhelp.ca रवि गुलाटी लॉ ऑफिस ठीक सलाह बल्ले बल्ले।
2: रोज दे खाने तो हो गया बोर,
3: ट्राई करना चाहते हो कुछ होर?
4: ताजे स्वादले चाइनीज खाने ले आज ही पहुँचो एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट 2648 इस्लिंगटन एवेन्यू इटोबिको फोन नंबर 4167498333 यानी 416-749-8383 जे वधिया स्वादला चाइनीज है खाना ता एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट ही आना
5: एशिया गार्डन चाइनीज रेस्टोरेंट।
6: खुशियां दे जश्न बनाओ ते रुसियां नू मनाओ अपनियां नाल बैठ के ताजे स्वादले जायकेदार फूड दा लुत्फ उठाओ लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट आओ ताजियां स्वादलियां मठियाईयां अते जायकेदार फूड ले हमेशा याद रखो लाली स्वीट्स जित्थो तुसी डाइन इन या टेक आउट भी ले सकते हो ग्रेट फूड बेस्ट सर्विस ले लाली स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पहुंचो 499 रे लॉसन बुलेवार्ड ब्रैम्पटन कॉल 905-450-6464
5: लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट लाली स्वीट एंड रेस्टोरेंट।
7: कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दुनिया दे किसी भी देश जान वास्ते हवाई सफर दे प्रबंधा दे नाल पीआर कार्ड कैनेडियन सिटीजन या ओसीआई ली अप्लाई करन दे नाल विजिटर टूरिस्ट या सुपर वीजा दी इनसोर्स करोना चाहुंदे हो ता मिलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 2883 डाई रोड एट एयरपोर्ट रोड 4550 इवनस रोड जून 12 इन ब्रैम्पटन और कॉल अवतार कटारिया 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
8: वाह भाभी जी मुबारकां तुहाडा घर ते बहुत शानदार है कारपेट्स वुडन सब कमाल दे ने लगदा है काफी खर्चा कीता है।
9: ए कमाल है जी जीटीए फ्लोरिंग दा अफोर्डेबल प्राइस ते क्वालिटी दा समान वड्डे शोरूम ते आओ हार्डवुड कारपेट लैमिनेट टाइल्स दी खूबसूरत ते लार्ज वैरायटी पाओ कॉल करो नव बराड़ नु 905-605-8005 905-605-6605
10: जीटीए फ्लोरिंग कैनेडा
5: जीटीए फ्लोरिंग कैनेडा।
11: ताजिया सब्जियां फ्रेश फल फ्रूट वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तुहाडा मनपसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया अनाज मार रोज दी ग्रोसरी होवे चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ फ्रेशनेस वैरायटी क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट 42 ए ब्रैम्पटन कॉल 9059288557।
12: इस हॉलिडे सीजन अपनी हर पार्टी के लिए लव साथ को अपना साथी

0: हैं।
1: लव साउथ से केटरिंग करवाओ और ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवरफुल डिशेस का मजा उठाओ। इडली, करी, सांबर, उत्पम, डेजर्ट्स और बहुत कुछ। विजिट lovesouth.ca।
2: लव साउथ।
3: तुसी सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो। Listening to CNN, Toronto. Chawla News Network, Toronto.